0: आइए प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं।
1: ये तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है।